0: मैं हूँ आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता और आप सुन रही हैं 5 VBI 103.1 पर आकाशवाणी एडिलेड का मशहूर प्रोग्राम यादों की बारात। दोस्तों, आज की शाम हम समर्पित कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन हीरो, स्टाइलिश आइकन, रोमांटिक सुपरस्टार और लाखों दिलों की धड़कन देवानंद जी के नाम। देवानंद जी का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब में हुआ था। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट करने के बाद वो मुंबई आए और अपनी मेहनत, लगन, मुस्कान और अपने अलग अंदाज से हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और लगभग 6 दशकों तक सिनेमा पर राज किया। उन्हें पद्मभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। एक छोटी सी शायरी अर्ज करना चाहती हूँ। मुस्कुराहट उनकी आज भी यादों में बसी है, हर अदा में एक नई कहानी सी लगी है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे दोस्तों, देवानंद नाम ही मोहब्बत की जुबानी थी। और आज शुरुआत करते हैं उनके पहले गीत के साथ, जिसमें नजर आई है देवानंद जी के साथ साधना। अभी ना जाओ छोड़कर ये गीत है और मूवी हम दोनों से लिया गया है। ओनली ऑन 5 VBI आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं FM VBR 103.1 पर आकाशवाणी आडले, और आज यादों की बारात में हम देवानंद जी पर प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो जो गीत अभी आपने सुना, उसमें साधना और देवानंद नजर आए, और उनकी जोड़ी उस दौर की सबसे ग्रेसफुल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। देवानंद जी की बात करें तो उनकी हेयर स्टाइल, उनका कैप पहनने का अंदाज, उनका स्कार्फ पहनने का अंदाज, उनका चलना, उनका डांस, ये सब बेहद पॉपुलर था। मानो हर कोई उनके अंदाज को कॉपी करना चाहता हो। वो कहते हैं ना, वक्त बदलता गया, चेहरे बदलते गए, पर कुछ अंदाज ऐसे होते हैं जो जमाने के साथ अमर हो जाते हैं। और आज अब हम बात करते हैं नूतन जी और देवानंद जी की। नूतन और देवानंद ने कई यादगार फिल्मों में काम किया, और दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री बेहद ही पसंद की गई, और ऐसी ही केमिस्ट्री अब आप सुनेंगी गीत दिल का बवर करी पुकार, मूवी तेरे घर के सामने इस मूवी से लिया है। आइए सुनते हैं ये गीत ओनली ऑन 5 VBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं यादों की बारात और आज हम मना रहे हैं देवानंद जी के यादों का सफ़र। सन 1940 के दौर में देवानंद जी ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्मों की स्थापना की। इसी बैनर ने हिंदी सिनेमा को कई नए कलाकार, नई जोड़ियां और नई सोच दी। मूवी जैसे गाइड, ज्वेल थीफ और हरे रामा हरे कृष्णा जैसे क्लासिकल मूवी के सफर का हिस्सा बने। एक और शायरी अर्ज है, सफर लंबे थे रास्ते नए थे, सफर लंबे थे रास्ते नए थे, ख्वाब आंखों में थे और हौसले बड़े थे, जो रुकते नहीं मुश्किलों के सामने, उन्हीं लोगों के नाम इतिहास लिखे गए थे। तो जो अगली हीरोइन मैंने देवानंद जी के ऑपोजिट ली है वो है शर्मिला टैगोर। बेहद ही उमदा गीत है गोरी गोरी गाँव की गोरी, फिल्म ये गुलिस्तान हमारा। इस मूवी का ये गीत जो कि 1972 में आई थी, ओनली ऑन 5 VBI पर सुनेंगे आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

0: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide? Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659, or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
2: Seeking a genuine assortment of spices and authentic Desi products? If so, a visit to Roylinda Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into Desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Roylinda Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 0883710051.
3: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878, and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
4: For setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road, Prospect, or call them on 8342 3923. LSM & Co., a sponsor of this program.
5: कितना सुहाना गीत अभी अभी आपने सुना. शर्मिला टैगोर और देवानंद दोनों ही अपनी एलिगेंस के लिए जाने जाते थे. देवानंद जी की पर्सनालिटी में एक अलग ही चार्म था, कंफर्ट था, जो हर हीरोइन के साथ उनकी जोड़ी को यादगार बना देता था. दोस्तों, देवानंद जी की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उनका नाम एक्ट्रेस सुरैया के साथ जोड़ा गया. दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनकी शादी नहीं हो सकी. बाद में देवानंद जी ने कल्पना कार्तिक से शादी की और फिर उन्हें दो सुहाने बच्चे भी हुए. और अब चलते हैं उनकी सबसे आइकॉनिक जोड़ी की तरफ, देवानंद और वहीदा रहमान की. आइए सुनते हैं आज फिर जीने की तमन्ना है मूवी गाइड का ये गीत है, ओनली ऑन 5 EBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ.

जो अभी भी आपने गीत सुना, गाइड मूवी। इस फिल्म ने फिल्मफेयर अवार्ड में इतिहास रच दिया। देवानंद जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला और आज भी गाइड को हिंदी सिनेमा का सबसे महान फिल्म माना जाता है। जिंदगी रुकने का नाम नहीं, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान है। जो मुस्कुराकर चलते रहे उनका ही नाम देवानंद है। और आज की आखिरी जोड़ी हेमा मालिनी और देवानंद की, फिल्म जॉनी मेरा नाम से ओ मेरे राजा ज़रूर सुनेंगे। और देवानंद जी ने हमें सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि जीने का एक अंदाज दिया है। उनकी मुस्कान, उनकी एनर्जी और उनका जज्बा आज भी हर जनरेशन को इंस्पायर करता है। जाते जाते आखिरी शायरी और फिर हम ये गीत सुनेंगे। सितारे टूट जाते हैं मगर रोशनी छोड़े जाते हैं। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर अपनी यादों में हमेशा जिंदा पाए जाते हैं। मैं हूँ आपकी प्यारी रेडी जॉकी निकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर 5 EBR 103.1 पर आकाशवाणी एडिलेड यादों की बारात। आइए सुनते हैं, अपना ख्याल रखिए, फिर आपकी और मेरी मुलाकात जल्द होगी।